दोस्तों, आजादी सिर्फ बंधनों से मुक्त होने का नाम नहीं है, बल्कि आजादी वो एहसास है जब दिल खुलकर मुस्कुराए, जब सपनों को पंख मिल जाए और इंसान बिना डर के अपनी दुनिया जी सके। कभी कभी जिंदगी हमें इतने बंधनों में बांध देती है ना कि हम अपने ही मन की उड़ान भूल जाते हैं, लेकिन जब दिल से डर निकल जाए ना तो हर आसमान अपना लगता है और हर रास्ता आसान लगता है।

जानते हैं दोस्तों, कभी कभी मन इतना बेचैन हो जाता है कि उसे खुद ही समझ नहीं आता कि वो तलाश किसकी कर रहा है। कोई चेहरा, कोई अपना, कोई सपना या फिर वो सुकून जो कहीं खो गया है। जिंदगी के भीड़ में इंसान बहुत कुछ पा लेता है, लेकिन दिल का खालीपन फिर भी बना रहता है। तभी हवाओं से, फिजाओं से, रास्तों से एक ही सवाल निकलता है, आखिर ये मन किसे ढूंढ रहा है।

दोस्तों, हवा जब मस्ती में झूमती है ना, तो सिर्फ पेड़ों की डालियां ही नहीं डोलती, दिल भी कहीं भीतर से थिरक उठता है। जैसे कोई पुरानी याद पायल पहनकर लौट आई हो, जैसे बचपन की गलियां फिर से पुकार रही हो। ये मस्त पवन अपने साथ न जाने कितने एहसास ले आती है। कहीं प्रेम की खुशबू, कहीं मिलन की आहट, तो कहीं जिंदगी को खुलकर जी लेने का पैगाम।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
1: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देशभर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष द्रष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
2: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाए।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है

0: संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। यह प्रस्ताव होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमरीकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से

0: सम्मानित किया जाएगा।
1: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manav Ka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, आज बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोकसत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी, राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर AI समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट है नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक AI चैटबॉट ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: The Somnath Amrit Parv 2026 is being celebrated to mark the 75th anniversary of the reconstruction of Somnath Temple. The five-day celebration highlights the historic significance of the temple and celebrates its enduring legacy. To commemorate this event, Prime Minister Modi is visiting the Somnath Temple on Monday.
1: The celebration honors the enduring legacy of the Somnath Temple. It marks 1,000 years since the first recorded attack on the Somnath Temple in 1026. Somnath Temple holds a sacred place as the first among the 12 Adi Jyotirlingas of Lord Shiva. Somnath Temple has been repeatedly ravaged and plundered by invaders over centuries. Every time, devotees and rulers have rebuilt it and restored its lost glory. Somnath Temple, therefore, stands as a testimony to India's unshattered faith that has risen victorious over repeated assault over centuries. The festivities will culminate on 11th of this month with a grand Kumbh Abhishek at the temple spire using water from 11 sacred shrines. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
0: On to sports. In IPL cricket, Rajasthan Royals will face Gujarat Titans in Jaipur. The match will start at 7:30 p.m. Earlier, Kolkata Knight Riders defeated Delhi Capitals by 8 wickets at Delhi last night. Chasing the victory target of 143 runs, Kolkata Knight Riders made 147 for the loss of 2 wickets in 14.2 overs. Finn Allen delivered a jaw-dropping batting masterclass to power Kolkata Knight Riders to a commanding 8-wicket victory over Delhi Capitals. Two new suspected cases of hantavirus were reported yesterday, one in Spain and the other on the remote South Atlantic island of Tristan da Cunha, as experts race to contain an outbreak that began on a luxury cruise ship. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Shubhendu Adhikari becomes the first BJP Chief Minister of West Bengal, takes oath along with 5 cabinet ministers. Political stalemate continues for government formation in Tamil Nadu as TVK yet to reach the majority mark. National Legal Services Authority organizes National Lok Adalat across the country to provide amicable settlement of disputes. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar meets Prime Minister of Trinidad and Tobago to strengthen bilateral cooperation. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to face Gujarat Titans in Jaipur this evening. For details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and News on EIR app. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Lavleen Nigam. शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
4: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करते थी जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। आमी ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব।
3: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुद

0: कांजीराम टूडू और निशित प्रामाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से काशफीन नाहर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राजनेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
2: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का क्या था, नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए वोट टेकिंग किया।
1: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पौचिशे बैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्रा कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्रवाई की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
0: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खान पान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर विस्तारित किया जाए।
1: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जल डमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान कर

0: ने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। दो दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
1: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने FM स्टूडियो में एंकर द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: आकाशवाणी शिलांग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। TVK को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में IPL क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
1: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। विदेशमंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकरः भारत त्रिनिदाद टोबेगो देशानां मिथः पारंपरिक संबंधानां प्रशंसाम् अकरोत्। त्रिनिदाद टोबेगो इत्यस्य विदेश तथा कैरिकॉम प्रकरणानां मंत्रालयस्य समारोहे डॉ. जयशंकरेण द्वयोः देशयोः प्रगाढ़ सांस्कृतिक संबंधानां अथ ऐतिहासिकतायाः उल्लेखं कृतम्। भारतस्य त्रिनिदाद टोबेगो अमुना सह परंपरागत रूपेण मैत्रीपूर्णाः संबंधाः वर्तन्ते। उभयोः देशयोः जनाः वेशभूषां, क्रीडां, आहार व्यवहारं च समेत्य परंपराः यावत् नैकेषु विषयेषु साम्यं संददते। डॉ. जयशंकरेण प्रधानमन्त्रिणा कमला प्रसाद विशेषवर्येण सह मेलनं विधाय द्विपक्षीय सहयोगं इतोपि सुदृढीकर्तुं चर्चा कृता। यात्रावधौ पर्यटनं, विदेश कैरिकॉम मंत्रालय भवनस्य सौरोर्जा संचालनं, विविध परियोजनाः अथ च आयुर्वेद केन्द्रस्य स्थापनां समेत्य नैकेषु विषयेषु सहमतिः जाता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः कर्णाटकस्य बेंगलुरु नगरे आर्ट ऑफ लिविंग इत्येतस्य संस्थानस्य 45वीं वर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य आयोजयिष्यमाणे समारोहे सहभागितां करिष्यति। श्रीमोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर इत्यत्र नवनिर्मितं ध्यानमन्दिरमपि उद्घाटयिष्यति। ततः परं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हैदराबाद नगरे प्रायः 9.5 crore रूप्यकाणां अनेकासां विकास परियोजनानां शिलान्यासं लोकार्पणं च करिष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तत्र हैदराबाद पणजी आर्थिक वीथिकायां राष्ट्रीय राजमार्गस्य चतुः भागपरस्य निर्माणस्य आधारशिलामपि स्थापयिष्यति। तत्रैव प्रधानमंत्री वारंगल स्थले पीएम मित्रा पार्क इत्येतस्य उद्यानस्य उद्घाटनं करिष्यति। सममेव श्रीमोदी हैदराबाद अत्याधुनिकं कर्करोगपरं चिकित्सालयमपि लोकार्पयिष्यति। अद्य गुरुदेवस्य रवीन्द्रनाथ ठाकुरस्य 65वीं जयंती वर्तते। दिनमिदं उपलक्ष्य शान्तिनिकेतनं, विश्वभारती विश्वविद्यालयं अथ बांग्लादेशं समेत्य जगतः अनेकेषु स्थलेषु सांस्कृतिक कार्यक्रमाः समायोजिताः। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन वर्यः, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाहः अथ रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः पोचिशे बोईशाख इत्येतस्य अवसरे गुरुदेवाय श्रद्धांजलिं समर्पितवन्तः। भारतीय रिजर्व बैंक इत्यनेन नियामक निर्देशानां तथा च केवाईसी मानकानां उल्लंघनम् उद्दिश्य हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस सहैव यस बैंक इत्यनयोः उपरि मौद्रिक दण्डः आरोपितः। पृथक पृथक वक्तव्येषु भारतीय रिजर्व बैंकेन सूचितं यत् तेन हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस इत्यस्योपरि 1.80 lakh rupees दण्डः प्रस्थापितः। अपरत्र यस बैंक इत्यस्योपरि 1.80 lakh rupees दण्डः आरोपितः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन आगामी 5 दिवसेषु केरलम राज्यस्य विविध जनपदेषु विद्युत्पातेन, प्रचंड वायुना च सह अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। विभागेन अद्य राज्यस्य 9 जनपदेषु पीतवर्णीया संचेतना अपि प्रसारिता। श्वः अपि संचेतना तावत् 7 जनपदेषु यथावस्थं कार्यान्विता भविष्यति। प्रतिकूल वातावरणस्य कारणात् मत्स्याजीविभ्यः अद्य केरल लक्षद्वीपतटेषु गमन परिहारार्थं परामर्शः प्रदत्तः। यद्यपि कर्णाटक तटेषु मत्स्यग्रहणार्थं तादृशः कश्चन प्रतिबन्धः एतावता नैव उपस्थापितः। आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां अद्य राजस्थान रॉयल्स दलं गुजरात टाइटन्स दलेन सह क्रीडिष्यति। भारतीय समयानुसारेण इयं स्पर्धा तावत् सायं सार्ध सप्तवादने जयपुर नगरे आरप्स्यते। अवधेयं यत् अंकतालिकायां राजस्थान दलं चतुर्थे गुजरात दलं च पंचमे स्थाने स्तः। इति वार्ताः।

0: ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಫ್ಎಂ ರೇನ್ಬೋ 101.3 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್, ಮ್ಯೂಸಿಕಲಿ ಯೋರ್ಸ್.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह. शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. पांच विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली. तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया. कल मुख्यमंत्री

0: पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल RN रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में PWD की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले BJP मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 99 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य जी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम TVK के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में TVK 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में TVK नेता अधव अर्जुन ने बताया कि VCK और IUML दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे TVK की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि TVK पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, VCK और IUML से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंडा में रज जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। सीबीआई ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने

0: राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का स्थान रहा, जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। APEDA के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं, जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: चीन की शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतर कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Shubhendu Adhikari takes oath as first BJP Chief Minister of West Bengal. 5 MLAs also sworn in as Cabinet Ministers. TVK Chief C. Joseph Vijay stakes claim to form government in Tamil Nadu.

अगली प्रस्तुति है कजरी। बोल हैं धीरे धीरे से झुलाओ सुकुमारी या हो। द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन इज कजरी।

के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

अगर सुनी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मन मीत में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 11:30 और 42 सेकेंड। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मन मीत की, गोल्डन एरा के वो नगमे जिन्हें हम बार बार सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं। ये वो नगमे हैं जो हमारे दिल के बेहद करीब है और ये वो नगमे हैं जो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ये उस दौर के नगमे हैं जो बहुत पीछे छूट गए लेकिन आज भी बसते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम एक बार फिर से उसी हकीकी दौर में चले गए हों। ऐसा ही एक नगमा, अगला नगमा आपके लिए हम लेकर आए हैं फिल्म हावड़ा ब्रिज से। यह फिल्म आई थी 1958 में। शक्ति सामंतर साहब के निर्देशन में बनी यह फिल्म, इसका निर्माण भी उन्होंने खुद किया था। इसमें मुख्य किरदार में थे अशोक कुमार साहब, मधुबाला, केएन सिंह, मदनपुरी, ओम प्रकाश, धूमल, सुंदर, कम्मो, ब्रह्मा भारद्वाज, चमनपुरी वगैरह। इस फिल्म के गीतों को लिखा हम सब के चहेते, हम सब के प्यारे कमर जलालाबादी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा ओपी नैयर साहब ने। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा गीत आशा भोसले जी और मोहम्मद रफी साहब की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत की इस दिलकश महफिल में आपके लिए

0: प्यार हो गई।
1: आशा भोसले और मोहम्मद रफी साहब की बेहद खूबसूरत आवाजों में नगमा था फिल्म हावड़ा ब्रिज से। यह फिल्म आई थी 1958 में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत की इस दिलकश महफिल में। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है, इस्तकबाल है। और गोल्डन एरा के वो नगमे जो हम बार बार सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं, उन्हीं नगमों में अगला नगमा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। एक और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही यादगार फिल्म और कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित इस फिल्म को एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म जिसके निर्देशक थे शोमैन, हम सब के चहेते राज कपूर साहब। इसका निर्देशन किया था राधु कर्माकर ने और इस फिल्म का निर्माण किया था राज कपूर साहब ने। राज कपूर साहब ने ना सिर्फ निर्माण किया था बल्कि इसमें बहुत ही खूबसूरत अदाकारी भी की थी। और यह फिल्म आई थी 1960 में। इस फिल्म में मुख्य किरदार में थे राज कपूर साहब, पद्मिनी, प्राण, चंचल, ललिता पवार, राज मेहरा, नाना पालिस्कर, सुलोचना चटर्जी और विश्व मेहरा। इस फिल्म के गीतों को लिखा हसरत जयपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा शंकर जयकिशन साहब ने। हसरत जयपुरी साहब के साथ में शैलेंद्र साहब ने भी

कुछ गीत को लिखा है इस फिल्म के। और खास बात यह है कि इस फिल्म ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कारों में कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते। 90वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में इस फिल्म ने 8 श्रेणियों में सबसे अधिक 4 पुरस्कार जीतकर अपनी अलग पहचान बनाई थी। और जो पुरस्कार इनको मिला था उनमें थे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार राज कपूर साहब को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का भी पुरस्कार राज कपूर साहब को ही मिला था। बेस्ट संपादन का पुरस्कार मिला था जीजी माइकर साहब को और सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन का पुरस्कार एमआर अचरेकर को मिला था। यह फिल्म बहुत ही खूबसूरत थी, अपने दौर की बहुत ही खूबसूरत फिल्मों में से एक थी। और यह फिल्म थी जिस देश में गंगा बहती है। आइए इसी फिल्म का एक नगमा हम आपको सुनवाते हैं। आशा भोसले, महेंद्र कपूर, साहिर लुधियानवी लता मंगेशकर जी और गीता दत्त, मुकेश मन्ना डे साहब के साथ साथ महेंद्र कपूर की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

लता मंगेशकर जी, गीता दत्त, मुकेश मन्ना डे साहब और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में नगमादा फिल्म जिस देश में गंगा बहती है, और ये फिल्म आई थी 1960 में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की, और गीत मेरे मनमीत की इस महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं, यानी आपका अपना दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलुस आदाब। एक बार फिर से आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल है गीत मेरे मनमीत की इस दिलकश महफिल में। आपको यह प्रोग्राम कैसा लग रहा है, आप हमें अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं, उसके लिए आप हमारा मेल आईडी नोट कर लें। हमारा मेल आईडी है fmgoldaidaily@gmail.com। मुझे आपके संदेशों का इंतजार रहेगा, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा, और जब तक आपके पैगाम हम तक पहुंचेंगे, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत सफर को आगे बढ़ाते हैं गोल्डन एरा के उन बेहद खूबसूरत

के साथ। और अगला नगमा एक और बहुत ही खूबसूरत फिल्म 1965 में आई गुमनाम से। राजा नवाती साहब के निर्देशन में बनी यह फिल्म बेहद खूबसूरत सस्पेंस थ्रिलर और रोमांस से भरी हुई यह फिल्म थी। इस फिल्म के का निर्माण किया था एनएन सिप्पी साहब ने और इसमें मुख्य किरदार निभाने वालों में मनोज कुमार साहब, नंदा, प्राण, हेलेन, मदनपुरी, तरुण बोस, धूमिल, मनमोहन, लक्ष्मी छाया, हीरा लाल और सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभाने वाले महमूद साहब। अगला नगमा भी उन्हीं पर फिल्माया गया है और इस फिल्म के गीतों को लिखा है शैलेंद्र साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन साहब ने। आइए सुनते हैं फिल्म गुमनाम का वही बेहद खूबसूरत नगमा। आवाज है मोहम्मद रफी साहब की और साथ ही साथ महमूद साहब की।

मोहम्मद रफ़ी साहब और महमूद साहब की आवाज़ों में नगमा था फिल्म गुमनाम से। ये फिल्म आई थी 1965 में। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत की इस दिलकश महफिल में अब आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत नगमे के साथ। नगमा नहीं बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत ये कव्वाली है। आवाज़ें हैं आशा भोसले, मुबारक बेगम, इन दोनों की आवाज़ें हैं और जिसे लिखा है हसरत जयपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन साहब ने। और ये कव्वाली है फिल्म आरजू से और ये फिल्म आई थी 1965 में। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में राजेंद्र कुमार, साधना, फिरोज खान, महमूद, नाजिमा, नासिर हुसैन, अचला सचदेव, नाना पालिस्कर, ब्रह्मा भारद्वाज और धूमल वगैरह ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया था और इन तमाम अभिनेताओं अभिनेत्रियों के अभिनय से यह फिल्म बहुत ही खूबसूरत बन गई थी। तो चलते चलते यह कव्वाली आपके लिए

0: अशा भोसले और मुबारक बेगम की इसी आवाज़ के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाज़त। सबसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद श्रेयसी रहेंगी आपके साथ लेकर अगला कार्यक्रम। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी हमारी मुलाकात ठीक 3:10 पर। तब तक के लिए नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल R.N. रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 11 मई को नबन्ना में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया। पार्टी ने घोषणा की कि धने खाली विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधायक नैना बंदोपाध्याय विपक्ष की उपनेता होंगी। कोलकाता पोर्ट विधायक फिरहाद हकीम को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि नवनियुक्त नेता बंगाल की जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने कल लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा किया। श्री विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री रवि रविशंकर के 70वें जन्म समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला परसद बिसेसर के साथ त्रिनिदाद और टोबैगो के नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप का वो स्थान जहां गिरमिटिया भारतीय मजदूर सबसे पहले त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे थे। डॉ. जयशंकर ने नेल्सन द्वीप पर त्वरित

पानी पर लिखी कहानी। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है कजली। और ये शानदार

47 डिग्री तापमानदार टीका टीक दोपहरिया है। गजली सिर पर सौदा किराने का झोला धरे बाजार से घर लौट रही है। मोटा की चक्की तिराहे से आगे जाती संकरी सड़क, उसके किनारे भीड़ जुटी है। होगा कोई खेल तमाशा, गजली को क्या, सूती धोती के छोर से मुंह पोंछती वो अपनी तेज चाल में है कि उस नवजात क्रंदन ने जैसे उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी। अरे ये जन्म लिया बच्चा यहाँ कहाँ रोता है? उस स्वर के लवलेश मात्र ने सब कुछ विचलित कर दिया। मर्द मानुषों की भीड़ में धंसकर गजली देखती है, ये क्या, सड़क किनारे गड्ढे के कूड़े में एक नवजात शिशु बिलख रहा है। गजली ने उस पार देखा, गंदगी, झाड़ झकूरों और तपते वीराने के पार दूर कुछ बसाहट दिखाई पड़ती है, लेकिन आसपास माँ तो क्या, मनुष्य भी कोई नहीं, बस आवारा जानवर इधर उधर को ही चले आते दिखते हैं। गड्ढे के इस पार तिराहे की भीड़ कुछ देर से जुटी लगती है। उसमें से ज्यादातर अपने फोन के कैमरे से फटाफट फोटो खींच रहे हैं, दो तीन लड़के वीडियो बना रहे हैं। कुछ आवाजें पुलिस को फोन करो, पुलिस को फोन करो की भी है। कोई कह रहा है जरूर ये लड़की होगी, इसीलिए घूरे पे फेंक दी। क्या पता लड़की है कि लड़का, आजकल तो लड़कों को भी घूरों पर फेंकने की खबरें छपती है अखबारों में। भाई कोई लड़का कैसे फेंक सकता है, क्यों नहीं, कुछ भी हो सकता है। कजली भीड़ की अश्लील हंसी के परे देख रही है। उस ओर के आवारा जानवर बड़े गड्ढे के किनारे कूदने से पहले पीछे हटने की मुद्रा में आ चुके हैं। गड्ढे में नवजात के क्रंदन का स्वर मंद पड़ रहा है, उसके ऊपर चींटे रेंग रहे हैं। इतने मर्द मानुषों की भीड़ के रहते अकेली चनी आगे कैसे बढ़े? और कजली तो 2 सीटर का 5 रुपया किराया बचाने के लिए सौदा किराने का झोला सर पर रख कर 2 किलोमीटर दूर से पैदल चली आ रही है। वो अपना सैकड़ों रुपयों का सामान किनारे छोड़कर भला गड्ढे में कैसे कूद जाए? आसमान के ठहरे रथ से सूर्य नारायण आग के बाण चला रहे हैं और भीड़ बातों के। कजली ने आधे चेहरे पर घूंघट निकाला और सिर पर 40 किलो वजनी झोला साधे गड्ढे में कूद गई। भीड़ में सन्नाटा छा गया। गड्ढे में कूदी कजली ने आधे पल में शिशु को उसकी चीटों भरे शॉल में से उठाकर खुद से चिपटा लिया। अरे ये देखो देखो जनी जनी, मानस में अगुवाई का ये हौसला, अरे कहीं इसी का तो नहीं, अस्पताल ले जाओ बच्चे को। पुलिस को किसी ने फोन किया था? अरे भाई पुलिस को तो 3 फोन कर चुके हैं, पुलिस के पास तो जीप ही नहीं है। अरे पुलिस क्या तुमसे पूछ पता कर आएगी? अरे वो तो अचानक आएंगे और 2-4 को पकड़ लेंगे कि तुम ही ने देखा होगा सब, आती होगी पुलिस तो। भीड़ अचानक छटने लगी, सब चेहरों पर एक साथ भय दिखा। पुलिस मामला हुआ तो गवाही के लिए वो गर्दन पकड़ेंगे। तिराहा 2 पल में सूना हो गया। बस इक्के दुक्के उत्साही लड़के ही वहां रह गए जो अपने अपने फोन के कैमरे से वीडियो उतारने में तलीन है। कजली ने नवजात की नग्न देह से चींटे खींचे। आहा कन्या रत्न, जगह जगह हो आए घावों से खून छल छला आया है। 5 घंटे की नवजात अग्नि सी धूप, अग्नि सी ही भूख से बिलबिलाकर अब वो मरना संसी उसकी बाहों में झूल रही है। हे भगवान, ऐसे स्वागत किया है इस संसार ने इस लड़की का। कजली ने सूती धोती के शीतल छोर तले उस जीवित मांस पिंड को समेट लिया। सिर पर झोले का वजन साधा और गड्ढे से बाहर निकलने के लिए सोचती सी इधर उधर देखने लगी। उसके चेहरे पर मदद की दरकार देखकर इक्के दुक्के लोग जो वहां से हटने को ही थे तुरंत रफा दफा हो गए। कांटे

आड़ पत्थर गंदगी फांदती कजली फेरा देकर वापस तिराहे पर आ गई। कजली और किलोमीटर भर चलती है और घर पहुंचती है सरकारी स्कूल नंबर 1 के पीछे कुमारपुरा में किराए के ये दो कमरे, दो नन्हे बच्चे, 7 साल का कैलाश और 4 साल की सोन। दोनों बच्चे कब से राह तकते हैं माँ के लौटने की। मम्मी झोले में क्या क्या लाई हो? ये कौन है? ये तुम्हारी बहन है। बहन तो क्या नाम है इसका? नाम तुम ही रख दो ना। नाम

कजली ने नवजात की देह साफ की, अब तक तो नाल भी नहीं कटी, और ये जख्म अस्पताल ले जाना होगा, पर उससे भी पहले उसे दूध पिलाना होगा। एक कप भर दूध है इस समय घर में। बच्चों के दूध पी चुकने के बाद ये कप भर दूध वो शाम तक बचा कर रखती है अपनी चाय के लिए। बच्चे के मुंह में आधा चम्मच भर दूध डाला तो उसे पीना भी ना आया। कजली की आंखें भर आई। अभागिन माँ ने पहला स्तनपान भी नहीं कराया इसे। मन इतना द्रवित हुआ कि वेग आत्मा की गहराई तक जा पहुंचा। ममता आंखों में आंसू बन झरझर झरती है, लेकिन स्तनों में ये कैसी झंझनाहट। सोन को माँ का दूध छोड़े साल हुआ, पर तब तक छाती में दूध नहीं उतरा। अब इसके लिए जीवन अमृत की बूंदे उतरेंगी भी या नहीं। उसने अपने आंचल को उड़ा दिया बच्ची को, और अगले पलों में एक मुस्कुराहट फैल गई उसके नम चेहरे पर। संसार में आने के पिछले 4-5 घंटों से कष्ट और घाव तो भरपूर मिल चुके नवजात को, लेकिन जीवन का रक्षक ये अमृत दूध अब मिला है।

कजली का दिमाग रफ्तार में है। जल्दी से घर के काम निपटाए, खाना पकाकर दोनों बच्चों को खिलाया और उन्हें साथ लिए दरवाजे पर ताला लगा अस्पताल जाने के लिए निकल पड़ी। शराबी पति देर रात तक लौटेगा, तब तक तो वो लौट ही आएगी। ना लौट सकी तो पड़ोसी को चाबी दिए जा रही है। नवजात को देखकर कुम्हारों के पुरा में भीड़ जुट गई। कन्या का जन्म व्यर्थ नहीं जाता, गर्भ में आती है तो जन्म

जन्मती ही है और जन्मती है तो जी भी जाती है। अपना भाग्य अपने साथ लाई है, अब तो जी गई ये भी। किसी ने एक सिक्का, किसी ने दो और किसी ने पांच का नोट रखकर नवजात कन्या के पांव छू लिए। सिविल अस्पताल की गजब अव्यवस्थाएं, कसैले जहर मुझे बर्ताव, गरीब से गरीब आदमी भी कलेजा थाम कर ही यहाँ इलाज के लिए आ पाता है। कम पढ़ी लिखी कजली लेकिन जानती है इस निर्मम तंत्र में जीवित कैसे बचे रहना है। मुख्य साहब के केबिन में अव्वल तो आम आदमी की सीधी पहुंच असंभव है। नवजात को पांव छुआई में जो सिक्के नोट मिले थे सब चपरासी की फैली हथेली पर रखने पड़े उसकी माँ यशोदा को। दिल भीतर ही भीतर कटकर रह गया, हालात जो न कराए। तीन बच्चों को लिए एक गवई माँ की ये जरूरत कि उसके एसी केबिन में घुस आई। मुख्य साहब घंटी बजाकर उसे बाहर पिकवाने ही वाले थे कि कजली ने नवजात बच्ची उनके पैरों में डाल दी। मशीनी लाल फीता शाह का पत्थर दिल अप्रत्याशित तौर पर धड़का। नवजात को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। यो खबर तो अव्वल पुलिस को देनी ही थी लेकिन चूंकि मुख्य साहब को अपने साले की बेटी की सगाई के लिए अभी ही सपरिवार निकलना था तो पुलिस के लंबे पूछताछ शेड्यूल से बचा गया। नवजात का इलाज शुरू हो गया। दोनों बच्चों को घड़ी घड़ी भूख लगती है। हाथ पास का भोजन चुक गया तो कजली ने आधा किलो आटा खरीद लिया और मरीजों के परिजन जहाँ ईंटों के चूल्हे बनाए हाथों से रोटियां थोप थोप कर सेक रहे थे वहां चली आई। किसी के जलते चूल्हे पर वो भी रोटियां सेक आई। अब बच्चों को परोसे किसमें, अपना आंचल फैलाकर माँ ने तीन जगह रोटियां रख दी। बच्चे खाना खाने लगे। खजली ने रोटी का पहला कौर मुंह में डाला ही था कि उसकी पीठ पर अचानक इतनी तेज लात मारी गई कि वो मुंह के बल धूल में जा गिरी। भूखी माँ और भूखे बच्चों का सब भोजन मिट्टी हो गया। अच्छा जी, क्या मैं यहाँ मौजूद नहीं था? क्या तेरा पति नहीं था जो तू जहाँ चाहे मनमर्जी से कहीं भी आती जाती है? ये था उसका नशेड़ी पति मनसुख, पापड़ जैसा पतला, फेफड़ों में रोग का स्थायी मरीज और नशे में घुल घुल कर मिटने की कगार पर आ खड़ा हुआ। हमेशा की तरह नशे में धुत उसे ढूंढता हुआ यहाँ तक चला आया था। गालियां बकते हुए मनसुख ने अपनी टायर की चप्पल उतार कर उसके मुंह पर मारनी चाही कि धूल से उठती कजली ने उसे एक जोर का धक्का दिया। एकदम से वापस नहीं उठ सका, पड़ा पड़ा ही चिल्लाने लगा, देखो भैया, सब लोग देखो, ये कैसी जनी है जो अपने आदमी पे हाथ उठाती है। ना जाने किसको उठा कर लाई है और मेरे सर पर रखती है। मैंने मना किया तो मुझे पीटती है। बिसूरते मनसुख के इर्द गिर्द लोगों की भीड़ जमा उठी। बिना पूरी बात जाने लोग तरह तरह से उसकी पत्नी को लांछित करने लगे। कैलाश और सोन के हाथ थामे कजली माँ शिशु वार्ड में चली गई, उपचाररत अपनी तीसरी संतान के पास। सवेरे नवजात को अस्पताल से डिस्चार्ज मिला। घर आकर काम में जिन की तरह जुट गई कजली। घर बच्चों के काम पूरे हुए तो अगरबत्ती बनाने बैठ गई। नवजात को सोन ने नाम दिया है गंगा। एक बूढ़ी पड़ोसन नाम जानकर मुस्कुराई, फिर आने का मकसद बताया, ओ गंगा की मम्मी, तनिक एक कटोरी शक्कर हो तो उधार दे दो। किसी स्वर्ग से निकली गंगा किन्हीं शिव जटाओं में सहज समा गई, पर गंगा के भाग्य में हिमालय में टिके रहने का सौभाग्य कहाँ। संसार के बीहड़ों, राख, आग, अस्थियों की तरफ चले जाना

तीनों बच्चे जबकि उनकी माँ की स्नेहा सिक्त छाव में हैं और कजली का परिश्रम भरा दिन निश्चिंतता से बीत रहा है, कुम्हारपुरा के इस किराए के घर में 1 किलोमीटर पीछे मोटा की चक्की तिराहे पर एक मोटरसाइकिल आकर रुकती है। एक सिपाही इधर उधर दुकानों पर पूछताछ कर रहा है। कल इधर से बार बार फोन कर रहे थे लोग, इधर कहीं गड्ढे में किसी ने बच्चा फेंका था क्या? गड्ढा तो यहाँ है, इसका मतलब है कि वारदात हुई है। बताओ तुम में से किस किस ने देखी वारदात, बताओ मुझे। जो दुकानदार सब विपरीतताओं में अपनी दुकान चलाना जानते थे वे अनिभिज्ञता जताकर इधर उधर हो गए, लेकिन एक दुकान का तरुण नौकर जो यथार्थ जीवन को कम जानता था उसने वो वीडियो दिखा दिया जिसमें एक स्त्री गड्ढे में कूदकर नवजात को चींटों भरी शॉल से निकालती है और अपने दामन में समेटकर अपनी राह चली जाती है। ठीक, सिपाही ने हथेली पर घिसी तंबाकू ठोक कर गाल में दबा दी। तुम्हारा ये मोबाइल जब्त किया जाता है, चलो थाने। सर सर सर, मुझे फोन कब वापस मिलेगा? नाबालिग लड़के के फोन नहीं जैसे प्राण खिंच गए, ना तो उसके तन पे ठीक कपड़े हैं, ना पैरों में साबुत जूते। ये महंगा फोन पिछले 6 महीने की इस नौकरी की पाई पाई जोड़कर खरीदा था। सिपाही लड़के को अपनी मोटरसाइकिल पर ले गया और थाने में सीधा थाना प्रभारी के सामने जा पहुंचा। थाना प्रभारी का दिमाग इस वक्त एकदम भन्नाया हुआ था। थाना प्रभारी साहब ने सिपाही के साथ उस गवाह

0: लड़के को आते देखा तो रंगदारी में एक दूसरे मामले का मुलजिम समझकर उसे पुलिस के रोल में पीटना शुरू कर दिया। सिपाही तरुण लड़के को बचाने की कोशिश करने लगा और उसके 8-10 बार दोहराने के बाद थाना प्रभारी के भन्नाए दिमाग तक ये बात पहुंची कि ये तो दूसरे मामले में संभावित गवाह है, एसपी साहब को किसी भी तरह खुश करना होगा। पलक झपकते ही रोज नामचे में एफआईआर दर्ज हो गई। अज्ञात महिला ने अज्ञात नवजात का अपहरण कर लिया। थोड़ी ही देर बाद पुलिस गवाह लड़के के साथ घटनास्थल का मुआयना करने लगी। गवाह लड़के ने मौका देखते ही दौड़ लगा दी। पुलिस को भागते लड़के के पीछे दौड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अरे गवाह भाग गया तो कोई बात नहीं, पुलिस वीडियो के सहारे पूछताछ करती घंटे भर में कुम्हारपुरा में कजली के घर तक जा पहुंची। मैंने तो उसकी जान बचाई है, मौके पर पुलिस पहुंचती ही नहीं थी तब, आप लोग आज पहुंचे, आज तक तो आवारा जानवर उसे हजम कर गए होते। अस्पताल में सब सच बताया था? बताओ। हाँ देखिए अस्पताल के कागज। नहीं नहीं मैंने उसे चुराया नहीं है। कहने से जीप में जाकर नहीं बैठी वो, पुलिस को मजबूरन उसके हाथ में हथकड़ी डालनी पड़ी। तीनों बिलखते बच्चों को भी जीप में पीछे धकेल दिया गया। कजली अपने आंसू पोंछती अपने दिल में अपनी मरहूम माँ से मुखातिब है। तुमने मुझे स्कूल कॉलेज जाने दिया होता तो आज मेरी ये गत ना होती। अब दरोगा जी के सर का दर्द कुछ हल्का हुआ। थाने पहुंचने तक वो लगातार फोन करते रहे अपने मित्र संवाददाताओं को। थाने पहुंचिए तत्काल, हमने एक घंटे मात्र में अपहरण का एक केस हल कर लिया है। प्रेस वार्ता हो गई। प्रेस वार्ता में कैमरों के फ्लैश चमके। हवालात में बंद महिला और तीन बच्चों की ओर उंगली उठाकर थाना प्रभारी साहब बता रही हैं। मुलजिम ने कहीं से इस नवजात बच्ची का अपहरण किया है। मुलजिम के पास ये बच्चे बरामद हुए हैं जिन्हें वो अपना बता रही है। प्रेस वार्ता निपटाकर थाना प्रभारी तुरंत एसपी साहब के ऑफिस के लिए निकल गए। रात के नशे और एसपी साहब की फटकार सहित सिर का भयानक दर्द भी अब सब गायब हो चुका था। हवालात में नवजात के लगातार रोने से दीवान साहब तंग आ गए हैं। अरे भाई कोई इस बच्ची को अस्पताल ले जाओ, गाड़ी नहीं है दीवान जी थाने में। क्यों कहां गई दोनों गाड़ियां? एक तो दारोगा जी एसपी ऑफिस में ले गए हैं और दूसरी वो दारोगा जी की जो बिटिया है ना उसको कोचिंग क्लास छोड़ने गई है। अच्छा तो कोचिंग क्लास से लौटकर तो आएगी ना अभी? नहीं वो फिर दारोगा जी की जो मिसेज है ना उनको बाजार ले जाएगी।
1: हैं?
0: तो क्या अपहृत बच्ची मुलजिम के पास ही रहेगी? और जवाब में होना ये था कि बदबूदार अंधेरी और दुर्गंध भरी हवालात की असहनीय गर्मी में अगले दिन तक माँ बच्चों को सड़ना था। लेकिन आईजी साहब के अचानक दौरे की खबर ने न सिर्फ थाने में सुव्यवस्था का हड़कंप मचा दिया बल्कि बंदियों का भी हड़बड़ी के साथ इंतजाम होने लगा। थाने की जीप बाजार जाती थाना प्रभारी की मेम साहब को आधे रास्ते में सड़क पर उतार कर थाने की तरफ वापस दौड़ी। दारोगा जी हक बकाए थाने में लौट आए और कजली को तीनों बच्चों के साथ मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने भेज दिया। क्या तुमने बच्ची को चुराया है? मजिस्ट्रेट मैडम ने सीधा ही प्रश्न कर दिया कजली से। धड़कते दिल को काबू करती बड़े हौसले और संयम से कजली ने विस्तार पूर्वक सारा घटनाक्रम कह सुनाया। अस्पताल के कागज और जब्त वीडियो उसकी सच्चाई के सबूत थे। कजली को आरोप मुक्त करने और बच्ची को अनाथालय भेजने के फैसले के अंत में मजिस्ट्रेट प्रतिभा चौहान ने पुलिस के लिए फिर वही सलाह लिखनी चाही, पर कानून की विदुषी ने अफसोस भरी सांस लेते हुए अपनी कलम रोक ली। मैडम जी ये बच्ची मुझे दे दीजिए, मेरे सिवाय कोई इसे माँ की तरह नहीं पाल सकता, आंचल पसार कर अनुनय किया कजली ने। मैजिस्ट्रेट मैडम आधे पल को अवाक रह गई, फिर संभली, औपचारिक आवाज में उसे बच्चा गोद लेने के कानून के बारे में बताया। कोर्ट के बाहर जाती कजली को दूर तक देखते उसके तरल हृदय में भीतर ही भीतर एक दुआ की, हे ईश्वर इस बच्ची को बस ये माँ मिल जाए। अंधेरा ढलते कजली दोनों बच्चों को लेकर घर पहुंची। दरवाजा खुला है, नशे में धुत पति भीतर से उसका नाम ले लेकर गालियां दे

रहा है। मोहल्ले के दो एक निकम्मे उसके पास बैठे हैं, उसे शह दे रहे हैं। कजली का दिल एक बार मुकर गया, छोड़ दे ये घर और आदमी, दिन रात के कलह से प्राण तो छूटे। दहलीज पर खड़ी वो ये सब सोच ही रही है कि दोनों बच्चे भागकर घर के भीतर पहुंच गए। पति के मित्र चुपचाप निकल गए। वो भीतर आई और रात का खाना बनाने में जुट गई। अगली सुबह सब घरेलू काम पूरे कर अगरबत्ती बनाने बैठी तो रत्ती भर दिल नहीं लगा उसका काम में। उसके सीने की नसों में खसक भरी सरसराहट होती है। बच्ची दूध के लिए तरस रही होगी। मम्मी गंगा के अस्पताल में है। मम्मी उसे घर कब लाएंगे हम? क्या आपने बहन को अस्पताल वालों को दे दिया? बच्चों के सवालों ने काम करते हाथों को रोक दिया। कजली निकल पड़ी थाने की ओर। दीवान साहब चौंकते हैं, गजब जनी, कल गिरफ्तार हुई थी आज फिर आ गई थाने। कजली हाथ जोड़कर अनाथालय का पता पूछती है। शहर से 4 किलोमीटर बाहर इस तरफ सड़क के बाहर टेम्पो 2 सीटर नहीं जाते हैं। मोड़ से ही कच्ची सड़क पर पैदल चलती रही कजली। दूर से ही वो अपनी नवजात के बिलखने का सर पहचान जाती है। पैरों में जैसे पंख लग जाते हैं माँ के। कजली ने भागकर गंगा को पलने में से उठा लिया। बच्ची दूध पीते पीते सो गई। उसकी गीली लंगोटी और कथरी बदलकर वापस उसे पलने में लिटा दिया और कुछ देर यूं ही निहारती रही कजली, ओ मेरी बिटिया।

अब उसने चारों तरफ नजर डाली। बड़े कमरे में तीनों पल्लों में बच्चे लेटे हैं, जो शायद तीनों ही लड़कियां हैं। बाकी कमरे में खेलती, सोती या रोती 1 से लेकर 5 साल तक की कुल 7 लड़कियां हैं। इसके अलावा उसमें 3 छोटे लड़के भी हैं, जिसमें से 2 दिव्यांग दिख रहे हैं। कजली इस बड़े कमरे से निकलकर इधर उधर घूमकर किसी अधिकृत व्यक्ति को ढूंढने लगी कि जिससे बात की जा सके। अनाथालय की रसोई, बगीचे, बाथरूम, ऑफिस, सभी स्थलों पर 5 साल से ऊपर की उम्र की लड़कियां काम करती दिख रही हैं। कोई 6 बरस की बच्ची बगीचे के पौधों को पानी देती, तो कोई 7 बरस की बालिका सब्जी काट रही थी। कजली को कहीं कोई कर्मचारी नहीं दिखा। वो दफ्तर गई, जहां 5 साल की एक लड़की पोछा लगा रही थी। बिटिया, यहाँ बात किससे करनी है? ओ मैडम जी तो घर में सो रही हैं, वो सामने ही उनका क्वार्टर है। 5 बरस की लड़की किसी पारंगत नौकरानी की तरह अपने काम में लगे लगे ही जवाब देती है। लाओ बिटिया, मैं तुम्हारी जगह पोछा लगाए देती हूँ। कजली ने उसके सर

0: पर हाथ फेरा। बच्ची इस अप्रत्याशित बात से सिखाया काम भूल गई। आंखें बड़ी कर उसे ताकती हुई बोली, मेरी अम्मा बहुत बुरी थी, उन्होंने मुझे मरने के लिए फेंक दिया, इसीलिए मुझे इतना काम करना पड़ता है। और सब दुत्कारते हैं। नहीं पिटिया, अम्मा बुरी नहीं होती, बुरे होते हैं कुछ लोग, कुछ रिवाज जो अम्मा से बच्चों को छीन लेते हैं। मैं मार डालूंगी उन सबको। वो बच्ची रोने लगी। तो पढ़ना, खूब खूब पढ़ना, तब जीत जाओगी गंदे लोगों से और गंदे रिवाजों से भी। हो सकता है तब तुम्हें तुम्हारी अम्मा भी मिल जाए। कजली ने प्यार से उसका गाल थपथपाया और आगे बढ़ गई। इंचार्ज मैडम के कमरे के बाहर खिड़की पर लगा इतना बड़ा कूलर चल रहा है जिसकी इतनी ऊंची आवाज है या कि उसकी नींद इतनी गहरी है कि बड़े देर तक दरवाजा पीटने पर भी वो दरवाजा नहीं खुला। ऑफिस में इंतजार करने का मन बनाकर वो लौटने को हुई ही थी कि पीछे दरवाजा खुल गया। कौन हो तुम और पालन गृह के अंदर कैसे घुस आई?
1: जी, एक बच्चे गोद लेना चाहती हूँ।
0: दरख्वास्त ले लीजिए। ऐसे दरख्वास्त हम नहीं लेते, सब कुछ कंप्यूटर में होता है। जाओ जाओ, पहले ऑनलाइन फार्म भरो, बच्ची देखने फिर किसी दिन आना, कहकर उसने दरवाजा फिर बंद कर लिया। कुछ ही देर बाद पालिंगरे की बूढ़ी आया हाथों में सब्जियों से भरे थैले लेकर आई। कजली ने दौड़कर मुख्य द्वार से ही उसके दोनों हाथों से दोनों थैले ले लिए और रसोई तक पहुंचा आई। ऑफिस में पंखे में सुस्ताते वृद्धा अब उसे एक राम कहानी सुना रही है। मैडम के अलावा यहाँ तीन लोग और थे, एक सहायक इंचार्ज, एक ऑफिस वाला और एक चपरासी। एक दिन सात आठ लड़कियां यहाँ से भाग निकली पीछे खेतों के रास्ते। उन लड़कियों की उम्र 10 से 15 के बीच में थी। वो सब पीछे के गांव पहुंची और गांव वालों से रो रोकर आप बीती सुनाने लगी। गांव वालों ने तुरंत पुलिस बुलाई। तब से पालन गृह के दो कर्मचारी जेल में है, एक फरार है। मामले में मैडम का भी नाम आया था, लेकिन मैडम की पहुंच बहुत ऊंची है। वो बीमारी का आड़ लेकर तुरंत गिरफ्तारी से तो बच गई, लेकिन अब उनका ट्रांसफर हो गया है। मैडम को तो बस अपना सामान बटोरना है यहाँ से, सो भी वो मुझसे ही करवाएंगी। अरे वो ठहरी थायराइड की बीमार, 18-18 घंटे बेहोश की तरह सोया करती है। हे भगवान, ऐसी भयंकर बीमार मैडम पालन गृह कैसे चलाती है? पिछले 3 सालों से तो उनका छोटा भाई ही सब काम देखता था, जिसे मैडम ने यहाँ का सहायक इंचार्ज बनवा दिया था। मैडम के रिश्तेदार बड़े ऊंचे अफसर हैं, हाँ, इसीलिए उनका भाई यहाँ कांड करता था और उसकी शिकायत भी न कर सकी बच्चियां। जब कभी भी निरीक्षण वाली टीम आती, लड़कियां जरूर अपनी बात कहती थी, पर इस चार दीवारी से बाहर उनकी आवाज जाने नहीं दी मैडम के भाई ने। 3 सालों तक यहाँ की बच्चियां यह जुल्म सहती रही और तुम देखती रही अम्मा, कुछ कहती तो मैडम नौकरी से निकलवा देने की धमकी देती थी। मेरा बेटा निकम्मा है, 2 कौर रोटी के लिए मैंने अपना परलोक बिगाड़ लिया। वृद्धा अपनी चिमचिमाई पनीली आंखों को धोती के कोर से पोंछती है। अम्मा, मुझे बच्ची गोद लेनी है जो कल यहाँ आई है, दरखास्त कैसे लगती है? अरे भाई, वो तो अब कंप्यूटर के भीतर से लगती है। तुम ऐसा करो, बाजार चली जाओ, कंप्यूटर कर दुकान पे 50 रुपए दे देना, वो सब कागज पत्तर बनाकर कंप्यूटर में डाल देगा और तुम्हारे नाम की दरखास्त लग जाएगी। 50 रुपए? ओह, तो कल जाऊंगी बाजार। आने से पहले फिर कजली ने अपनी गंगा को दूध पिलाया, सीने से चिपटाया। नेह का कैसा नाता है जो आत्माओं के तार जोड़ता है। 2 अपरिचिताएं नहीं, माँ बेटी का एक जोड़ा है।

ऑनलाइन आवेदन के बाद अगले 8 महीने तक कजली हर इतवार बच्चों के साथ गंगा से मिलने जाती रही। बच्चे हर स्कूली छुट्टी का अब अलग तरह से इंतजार करते। छोटी बहन से मिलने जाएंगे हम। कजली उल्टे फंदे सीधे फंदे के डिजाइन में जल्दी जल्दी स्वेटर बुन रही है। बच्चे दरी पर बैठे पढ़ रहे हैं, तभी कजली के सेल फोन की घंटी बजती है। अधिकृतों के समक्ष आवेदनों की सुनवाई हो रही है। वो अपने दोनों बच्चों के साथ लिए कमेटी के सामने प्रस्तुत है। तुम्हारा पति नहीं आया साथ में? उसकी सहमति नहीं है क्या? पहले से ही तुम्हारे दो बच्चे हैं, फिर तुम्हें एक और बच्चा गोद लेने की जरूरत है ही क्यों? अगरबत्तियां बनाने बेचने का मामूली काम करती हो। अच्छा, तो इसमें दो बच्चों के साथ इस बच्ची को भी अच्छी शिक्षा अच्छा खाना कपड़ा मुहैया करवा पाओगी, इसकी क्या गारंटी है भला? इन सब प्रश्नों का कजली ने एक ही उत्तर दिया है, मैं माँ हूं गंगा की। कमेटी के समक्ष पूरी कहानी है। गंगा के चींटों भरे शॉल से लेकर बुने जा रहे नर्म स्वेटर तक। और कमेटी ने निर्णय सुनाया है। ऑटो में जब कजली तीनों बच्चों के साथ घर के बाहर उतरी तो कुम्हारपुरा में रौनक लग गई। सब नन्नी बच्ची को देखने उमड़ पड़े हैं। कैलाश छोटी गदबद बहन को गोद में उठाकर घुमाने की कोशिश कर रहा है। सोन ने पूछा, मम्मी गंगा बड़ी होकर क्या बनेगी? रसोई करती कजली के हाथ कुछ पल को रुक गए। सोन के प्रश्न की प्रतिध्वनिया उसके भीतर लगातार गूंज रही थी। उसने जैसे खुद से एक वादा किया, मैं अपनी माँ को नहीं दोहराऊंगी।

होंगी और सधे शब्दों में कहा, जो बनना चाहेगी वो बनेगी। भयानक तपती रसोई में जैसे अनायास ही एक ठंडक खुल गई थी। कजली के रुके हाथ फिर से चल पड़े थे और सोन उसका चेहरा दमक उठा।

अभी आप सुन रहे थे ये कहानी जिसका नाम था कजली। इसे आपके लिए लिखा था इंदिरा दांगी ने। पानी पर लिखी कहानी। इस कार्यक्रम से अब रश्मि कुकरेती को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही दो दिन के दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 11 मई को नवन्ना में राज्य के वरिष्ठ पुलिस पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया। पार्टी ने घोषणा की कि धनेखाली विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधायक नैना बंदोपाध्याय विपक्ष की उपनेता होंगी। कोलकाता पोर्ट विधायक फिरहाद हकीम को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि नवनियुक्त नेता बंगाल की जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने कल लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल एन रंगास्वामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति एन रंगास्वामी को उनके शपथ ग्रहण की तिथि से पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त करती है। अधिसूचना के बाद उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने रंगास्वामी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। रंगास्वामी 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरे मैच में रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच 7:30 बजे से खेला जाएगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम का सामना आज चीन से होगा, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिम राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रॉयलसीमा, तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका आज बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Shubhendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal yesterday. Governor R.N. Ravi administered the oath of office in secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, five other MLAs including Dilip Ghosh, Agni Mitra Paul, Ashok Kirtaniya, Nishit Pramanik and Khudiram Tudu were sworn in as Cabinet Ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP ruled states, BJP President Nitin Naveen and several other leaders of BJP attended the ceremony. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay yesterday met Governor Rajendra Arlekar at Lok Bhavan in Chennai and staked claim to form government with the support of 120 MLAs. Mr. Vijay said to take oath as the Chief Minister of Tamil Nadu today. Tamilaga Vetri Kadagam, which emerged as the single largest party with 108 seats in the recent assembly polls, achieved the majority mark of 118 in the 234-member house required to form a new government in the state by securing backing from Congress, left parties, VCK and the Indian Union Muslim League, that is IUML. The top brass of the Congress party yesterday held a meeting in New Delhi to discuss government formation in Kerala. The meeting, convened by Congress Chief Mallikarjun Kharge at his residence, was attended by senior party leader Rahul Gandhi, party general secretary in charge of the state Deepa Das Munshi, general secretary organization KC Venugopal, and senior Kerala leaders Ramesh Chenithala and VD Satishan. The party said Congress Chief Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi will take the final decision on the new Kerala Chief Minister and the name will be announced very soon. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. Mr. Modi will first travel to Karnataka to participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. He will also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Thereafter, Prime Minister Modi will travel to Telangana to lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad. These projects collectively aim to strengthen connectivity, improve logistics efficiency, enhance safety, and provide a better travel experience for people. Later in the day, Mr. Modi will

आकाशवाणी के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। कार्यक्रम गीत सुहाने लेकर संग हूं मैं श्रेयसी और शुरुआत करते हैं हम अपना आज का ये कार्यक्रम इस नगमे के साथ।

आशा भोसले और रफी साहब की आवाज में फागुन फिल्म का ये बेहतरीन गीत दोस्तों आपने सुना। कार्यक्रम चल रहा है गीत सुहाने, जहां हम पुराने और बेहद ही बेहतरीन गीत आपके साथ साझा करते हैं, हम और आप साथ में मिलकर सुनते हैं और उसे यूं ही एंजॉय करते हैं। तो आइए अब रुख करते हैं अपने अगले गीत की तरफ। फिल्म 9 to 11 का ये नगमा किशोर कुमार की आवाज में।

दोस्तों, जब हम रेडियो पर जुड़ते हैं तो बेहतरीन नगमों के लिए जुड़ते हैं, और क्यों ना हो, आखिर कुछ ऐसे हमारे जज्बात हैं, ऐसे हमारे हालात हैं कि उन्हें शब्दों की जरूरत पड़ती है, और वो सारे शब्द हमें मिलते हैं हमारे हिंदी बॉलीवुड गीतों से। जी हाँ, बेहतरीन नगमे, बेहतरीन गाने और हमारे दिल का हाल। तो आइए अब बढ़ चलें अगले गीत पर।

दिल का तो आलम कुछ ऐसा ही हो जाता है दोस्तों, जब कोई बड़ी बड़ी आँखियाँ दिखाएं तो बस दिल तो चूहा बन के कहीं दुबक ही जाता है। खैर, इस तरह की नोकझोंक अटकेलियाँ तो हर तरह के रिश्तों में लगी रहती है, लेकिन जब दिल का मामला होता है तो इन अटकेलियों का एक अलग ही रस होता है। अभी जो गीत आपने सुना, फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 से लिया हमने आवाजें गीता दत्त और रफी साहब की। बढ़ते हैं अब अगले गीत की तरफ। गीता दत्त की ही आवाज में अगला ये नगमा फिल्म भाई भाई से।

आ फिल्म से ये नगमा आपने सुना दोस्तों, आवाज लता मंगेशकर की थी। अगला जो गीत आपके सामने पेश कर रही हूँ लता मंगेशकर और साथी की आवाज में है, फिल्म श्री 420 का। आइए सुनते हैं ये नगमा।

मधुमति फिल्म का ये नगमा दोस्तों आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में, बोल सजाए सलील चौधरी के, बोल सजाए शैलेंद्र के और म्यूजिक दिया सलील चौधरी ने। दोस्तों कार्यक्रम चल रहा है गीत सुहाने संग हूं मैं श्रेयसी और हम खास कुछ ऐसे पुराने क्लासिकल गीत आपके लिए लेकर आए हैं जो हमेशा हमेशा सुहाने रहते हैं, हमारे दिलों में तरोताज़ा रहते हैं। बढ़ते हैं अब अपने इस अगले नगमे की तरफ। फिल्म नया दौर का ये झूमता हुआ गाना रफ़ी साहब और आशा भोसले की आवाज़ में, जिसके बोल सजाए हैं साहिर लुधियानवी ने और संगीत दिया है ओपी नैयर साहब ने। आइए सुने ये नगमा और झूम जाएं इसके साथ।

और यूं ही दोस्तों किस तरह हमारे गीतों का सिलसिला चलता रहता है, हमारा साथ यूं ही बना रहता है और एक से एक बेहतरीन गीतें, एक से एक बेहतरीन गाने हमारे दिलो दिमाग में बस यूं ही झूमते रहते हैं। आइए बढ़ते हैं इस अगले गीत की तरफ। फिल्म पेइंग गेस्ट का ये नगमा किशोर कुमार की आवाज़ में बोल सजाए मजरू सुल्तानपुरी ने और म्यूजिक एस डी बर्मन साहब का।

पेइंग गेस्ट के इस बेहतरीन गीत के बाद दोस्तों अब एक और प्यारा सा नगमा मेरे जहन में आ रहा है फिल्म काला पानी का। आशा भोसले और रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी, लेकिन हाँ साथ ही साथ आपको ये भी बता दूँ कि कार्यक्रम गीत सुहाने अब इस गीत के बाद ही चल जाएगा विराम पर, लेकिन गीतों का सिलसिला जारी रहेगा FM गोल्ड चैनल पर, क्योंकि इसके बाद अब आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और समाचारों के पार अगला कार्यक्रम लेकर मैं श्रेयसी आपसे फिर जुड़ जाऊंगी। तो चलते चलते ये एक नगमा आपकी नजर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 11 मई को नवन्ना में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता नियुक्त किया। पार्टी ने घोषणा की कि धनेखाली विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधायक नैना बंदोपाध्याय विपक्ष की उपनेता होंगी। कोलकाता पोर्ट विधायक फिरहाद हकीम को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि नवनियुक्त नेता बंगाल की जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम TVK के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने कल लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में

दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला परसद बिसेसर के साथ ट्रिनिडाड और टोबैगो के नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप का वो स्थान है जहां गिरमिटिया भारतीय मजदूर सबसे पहले ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। डॉ. जयशंकर ने नेल्सन द्वीप पर त्वरित प्रभाव परियोजना के लिए डॉ. कमला परसद बिसेसर के साथ भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. एस. जयशंकर ने कहा कि भारतीय सहायता से समर्थित ये परियोजना एक अमर यात्रा की साझा विरासत को संरक्षित और प्रदर्शित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरे मैच में रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। घड़ी में ठीक 2:11 की सुइयां बढ़ती चल रही हैं और ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। संघ हूं मैं श्रेयसी और आइए इस रात की चांदनी बिखेरें और गीतों की श्रृंखला बढ़ाते चलें। शुरुआत करते हैं इस गीत से, फिल्म आनंद से लिया ये नगमा हमने मुकेश की आवाज में।

आनंद फिल्म का ये नगमा आपने सुना दोस्तों। ये गीत ही कुछ ऐसा है, ये फिल्म ही कुछ ऐसी थी जो हमेशा अपने दर्द को मुस्कुराहटों में छुपाने की दर्द या जज्बात को बयां करती थी। यूं तो ऐ जिंदगी तेरे सफर से शिकायतें बहुत हैं, यूं तो ऐ जिंदगी तेरे सफर से शिकायतें बहुत हैं, मगर दर्द जब दर्ज कराने गए तो देखा वहां कतारें बहुत हैं।

मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का ये नगमा किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना दोस्तों। म्यूजिक दिया कल्याण जी आनंद जी ने और बोल हैं अनजान के। अगला नगमा जो आपके सामने पेश कर रही हूँ फिल्म गोलमाल का है, किशोर कुमार की ही आवाजें हैं और बोल सजाए हैं गुलजार ने। आइए सुनते हैं ये नगमा।

कभी लोग पास होकर भी अजनबी लगते हैं, कभी लोग पास होकर भी अजनबी लगते हैं और कभी अजनबी भी अपने से करीब लगते हैं। जिंदगी की यही सबसे अजीब सच्चाई है, रिश्ते खून से नहीं, एहसास से जुड़ते हैं।

मुकेश और कंचन की आवाज में फिल्म धर्मात्मा का ये नगमा आपने सुना, बोल सजा इंदीवर ने और म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी का। बढ़ते हैं अपने इस अगले गीत की तरफ। फिल्म कभी कभी का वो बेहतरीन नगमा जो हर किसी की जबान पे हमेशा रहता है। जी हाँ, आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की, बोल हैं खयाम साहब के।

अनामिका फिल्म का ये नगमा आपने सुना दोस्तों, आवाज़ लता मंगेशकर की, बोल सजाए मजरूह सुल्तान पुरी ने और संगीत दिया आर डी बर्मन साहब ने। आर डी बर्मन साहब का ही एक और सजाया संगीत फिल्म कटी पतंग से ये नगमा आपके साथ साझा कर रही हूँ। बोल सजाए हैं आनंद बख्शी साहब ने और आवाज़ है किशोर कुमार की। आइए सुनते हैं ये गीत।

गलतियां भी होंगी और गलत समझा भी जाएगा, गलतियां भी होंगी और गलत समझा भी जाएगा, ये जिंदगी है जनाब, यहां तारीफ भी होगी और कोसा भी जाएगा।

0: बस आए तू। क्या गा रही?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के? अच्छा।

फिल्म द ग्रेट गैम्बल से आशा भोसले की आवाज में ये बेहतरीन नगमा आपने सुना। बोल सजाए आनंद बख्शी ने और संगीत आर डी बर्मन साहब का। अगला गाना जो पेश कर रही हूं फिल्म मिस्टर नटवरलाल का, आइए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है रात सुरमई और संग हूँ मैं श्रेयशी। एफएम गोल्ड पर गीतों का सिलसिला यूं ही हमेशा जारी रहेगा, लेकिन वक्त रहते कदर कर लें अपनी हर उस एहसास का, बाद में होने वाले को पछतावा ना झेलना पड़े। तो इसलिए गीतों का सिलसिला जारी रहे, शब्द भी अगर आपको ना मिले तो बॉलीवुड की ओर रुख करें और एक से एक बेहतरीन नगमे अपने एहसासों में पिरोएं।

और उसे जरूर बयां करें। इसी के साथ अब मैं श्रेयसी यहां लेती हूं आपसे इजाजत, जल्द मिलने के वादे के साथ। लेकिन एफएम गोल्ड पर गीतों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। कुछ ही देर में अब आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और उसके बाद कार्यक्रम हमराही लेकर फिरोज आलम होंगे आपके साथ। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने की और उनके आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 11 मई को नवन्ना में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया। पार्टी ने घोषणा की कि धनेखाली विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधायक नैना बंदोपाध्याय विपक्ष की उपनेता होंगी। कोलकाता पोर्ट विधायक फिरहाद हकीम को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि नवनियुक्त नेता बंगाल की जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। सरकारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल N. रामास्वामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति N. रंगास्वामी को उनके शपथ ग्रहण की तिथि से पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त करती हैं। अधिसूचना के बाद उपराज्यपाल K. कैलाश नाथन ने रंगास्वामी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। रंगास्वामी 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तमिलनाडु में तलिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने कल लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला परसद बिसेसर के साथ

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा हमराही की, और हमराही की इस महफिल में मैं हूं आपका हमराही फिरोज। और ये सफर बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारा है। हम एक ही राह के मुसाफिर हैं, हम एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं, एक ही राह पर चल रहे हैं। जिंदगी हम तमाम लोगों की बिल्कुल एक जैसी है। किसी की जिंदगी में हमें लगता है कि बहुत सारी खुशियां हैं, लेकिन किसी की जिंदगी में बहुत सारी दुश्वारियां भी हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर इंसान की जिंदगी इन तमाम मरहलों से गुजर कर आगे बढ़ती है। कुछ परेशानियां, कुछ मुश्किलात, कुछ आसानियां और कुछ खुशियां। इन तमाम चीज़ों से मिलकर ही ये जिंदगी आगे बढ़ती है। और जब तक ये तमाम चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ना हो, तो फिर जिंदगी की खुशियों का और ज़िंदगी की तकलीफ़ों का हमें अनुभव ही ना होगा। ऐसे ही ये ज़िंदगी आगे बढ़ती है और हम सब मिलकर जिंदगी को इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। कुछ पाने की ललक, कुछ हासिल करने की तमन्ना, और उन तमन्नाओं में एक हम सफर की बात, प्यार, मोहब्बत। जब तक हमारी जिंदगी में प्यार ना हो, तो ये जिंदगी अधूरी सी लगती है। ऐसा ही एक बहुत ही खूबसूरत नगमा है हम आपके लिए लेकर आए हैं। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अभी आपने ये नगमा सुना था। और अगला नगमा किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में आपके लिए है।

सब सुनते हैं, गुनगुनाते हैं, मुस्कुराते हैं और ख्यालों की दुनिया में चले जाते हैं। ऐसे ही नगमों के साथ हम हाजिर हैं हमराही की इस महफिल में, और हमराही में उन नगमों के साथ हम हाजिर होते हैं जो आपके दिल के बेहद करीब हैं। वो युगल गीत जो सदाबहार रहें और हमेशा हमारे दिल में बस गए। ऐसे ही नगमों के साथ हम हाजिर हैं एक बार फिर से आपकी अपनी पसंदीदा महफिल हमराही में। हमराही में अब अगला नगमा एक और बेहद खूबसूरत फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से। आवाजें हैं लता जी और हम सब के चहेते मुकेश साहब की।

मैं न भूलूंगा, फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से आवाजें थी लता जी और मुकेश साहब की। अगर सुनी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हमराही की इस दिलकश महफिल में, हमराही की वो महफिल जो आपका हम सफर बनकर आपके साथ चलता है, आपका हमराही बनकर आपका हमराह बनता है, यानी आपके सफर को आसान बना देता है। अगर आप भी इस वक्त किसी सफर पे हैं, कहीं जा रहे हैं, या कोई काम कर रहे हैं, या आप अपनी पढ़ाई लिखाई में मशगूल हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपकी नज़र में कोई ऐसा है जो आपको चाहता है, या आप उसे चाहते हैं, या आप उन सब उनके दिल के करीब हैं, तो बस उन्हें याद कीजिए और इन नगमों को सुनिए, फिर देखिए कितना खूबसूरत, कितना सुकून आपको मिलेगा। ये नगमे हमेशा हमारे दिल की गहराई में उतर जाते हैं और हमें ले जाते हैं किसी और दुनिया में, शायद उसे ख्यालों की दुनिया भी कह सकते हैं, या अपने गुजरे वक्त को भी आप याद कर सकते हैं, और याद करके आप उसे दौर में वापस जा सकते हैं जब वक्त बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन था और आपका महबूब आपके साथ था। लेकिन अब जब वो आपके पास नहीं है, आपसे दूर है, तो आप उसे किस तरीके से याद कर रहे हैं, यही बताता है अगला यह नगमा। फिल्म आपकी कसम से किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हमराही की इस दिलकश महफिल में करवटें बदलते रहे सारी रात हम।

और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते। फिल्म अगर तुम न होते से नगमा तालता जी की आवाज में। अगर सुनी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जोश मलिहाबादी कहते हैं कि दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया। जब याद किसी की आती है और जब किसी की याद में आप मुब्तला होते हैं तो फिर ऐसे अल्फाज आपकी जबान से निकलना लाजमी है। दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। और ये यादें हमेशा के लिए हम सबके दिलों में कहीं ना कहीं बसी होती है, क्योंकि ये वो यादें होती हैं जो हम सबके दिल के बेहद करीब होती हैं। और ऐसे ही यादों के साथ हम जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं, रुकते नहीं हैं, बस बढ़ते जाते हैं, बिल्कुल हमराही के इस सफर की तरह। और हमराही में अगला नगमा कुछ ऐसा ही, संगम फिल्म से मुकेश साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज में। अगर सुनी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

मेरे सनम, दो जिस्म मगर एक जान है हम। संगम फिल्म का ये नगमा मुकेश साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हमराही की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में आप और हम मिलकर चल रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत सफर पर। तो ये सफर कैसा लग रहा है, ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, आप हमें जरूर बताइएगा। उसके लिए आपको हमें मेल करना होगा और मेल करने के लिए हमारा ईमेल आईडी जरूर नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldaardaily@gmail.com, fmgoldaardaily@gmail.com। हमें आपके पैगामात का इंतजार रहेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और हमराही के इस बहुत ही खूबसूरत सफर को आगे बढ़ाते हैं एक और बहुत ही प्यारे नगमे के साथ। और ये नगमा है फिल्म आंधी से, लता जी की और किशोर कुमार साहब की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आपके लिए ये नगमा खास तौर से।

तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। आंधी फिल्म का यह नगमा था, आवाज़ें थी लता मंगेशकर जी और किशोर कुमार साहब की। इसी के साथ मुझे यानी फेरोज़ को अब

इजाज़त, हम रही से। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार मैं फिर रहूँगा आपके साथ लेकर आपका अपना प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे और वे कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल नबन्ना में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया। पार्टी ने घोषणा की कि धनेखाली विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधायक नैना बंदोपाध्याय विपक्ष की उपनेता होंगी। कोलकाता पोर्ट विधायक फिरहाद हकीम को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि नवनियुक्त नेता बंगाल की जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज चेन्नई पहुंचेंगे। विजय आज चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर उन्हें पद की शपथ दिलाएंगे। सरकारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल एन रंगास्वामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति एन रंगास्वामी को उनके शपथ ग्रहण की तिथि से पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त करती हैं। अधिसूचना के बाद उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने रंगास्वामी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। रंगास्वामी 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए खरीद संबंधी अनुपालन दिशा निर्देशों की नियमावली लागू करके केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कार्यरत बाहरी स्रोत और संविदा कर्मचारियों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य वेतन का समय पर भुगतान, सामाजिक सुरक्षा अंशदान का अनिवार्य भुगतान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही और श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन तंत्र सुनिश्चित करना है। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरे मैच में रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Shubhendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal yesterday. Governor R.N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, five other MLAs including Dilip Ghosh, Agni Mitra Paul, Ashok Kirtaniya, Nishit Pramanik and Khudiram Tudu were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP ruled states, BJP President Nitin Naveen and several other leaders of BJP attended the ceremony. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay yesterday met Governor Rajendra Arlekar at Lok Bhavan in Chennai and staked claim to form government with the support of 120 MLAs. Mr. Vijay is set to take oath as the Chief Minister of Tamil Nadu today. Tamilaga Vetri Kadagam, TVK, which emerged as the single largest party with 108 seats in the recent assembly polls, achieved the majority mark of 118 in the 234-member house required to form a new government in the state by securing backing from Congress, left parties, Vidutalai Chirutai Gal Kachi, VCK, and the Indian Union Muslim League, IUML. Lok Sabha Leader of Opposition and Senior Congress Leader Rahul Gandhi will arrive in Chennai today to attend the swearing-in ceremony of C. Joseph Vijay as the new Chief Minister of Tamil Nadu. According to official sources, Rahul Gandhi is scheduled to land in Chennai by flight at around 8:40 a.m. The top brass of the Congress Party yesterday held a meeting in New Delhi to discuss government formation in Kerala. The meeting convened by Congress Chief Mallikarjun Kharge at his residence was attended by Senior Party Leader Rahul Gandhi, Party General Secretary in Charge of the State Deepa Das Munshi, General Secretary Organization K.C. Venugopal and Senior Kerala Leaders Ramesh Chenithala and V.D. Satishan. The party said Congress Chief Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi will take the final decision on the new Kerala Chief Minister and the name will be announced very soon. President Draupadi Murmu yesterday appointed N. Rangaswamy as the Chief Minister of Puducherry, according to a government notification. Following the notification, Lieutenant Governor K. Kailashanathan has invited Rangaswamy to form the government, official sources said. Rangaswamy would be sworn in as Chief Minister on May 13. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. Mr. Modi will first travel to Karnataka to participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bangalore. He will also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Thereafter, Prime Minister Modi will travel to Telangana to lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad. These projects collectively aim to strengthen connectivity, improve logistics efficiency, enhance safety, and provide a better travel experience for people. Later in the day, Mr. Modi will reach Jamnagar on a two-day visit to Gujarat. Defence Research and Development Organisation DRDO yesterday successfully conducted an extensive, long-duration test of its actively cooled full-scale scramjet combustor in Hyderabad. Ministry of Defence said that the test achieved a run time of over 1,200 seconds, surpassing the earlier 700 seconds test held in January this year. The successful test positions India at the forefront of advanced aerospace capabilities and continuously emerging war technologies. It also validates both the combustor design and the capabilities of the state-of-the-art test facility,

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 4:11 और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा का और अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं आपके खिदमत में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फेरोज तो अब तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब और आज के इस नई सुबह में आप सभी का स्वागत है इस्तकबाल है कहते हैं कि वसीम बरेलवी साहब कहते हैं कि आते आते मेरा नाम सा रह गया आते आते मेरा नाम सा रह गया उसके होठों पे कुछ कांपता रह गया जब कोई आपका अपना आपके साथ हो तो आपके दिल में बहुत सारी उमंगें जमा होती रहती है बहुत सारी बातें हैं जो अंदर ही अंदर हिचकोले लिए घूमती रहती है बहुत सारी बातें आपके दिल में फूलों की तरह खिलती रहती हैं और जब ऐसा होता है तो समझें कि आपका अपना आपके दिल के कितने करीब है और जब आपका अपना कोई आपका साथ दे रहा हो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा हो तो यकीन मानिए दिल की उमंगें तो जमा होंगी ही होंगी और फिर जिंदगी भी बेहद खूबसूरत होगी तो चलिए ऐसे ही खूबसूरत नगमों के साथ हम आगे बढ़ते हैं अरुणिमा की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में आवाज़ है हेमंत कुमार साहब और गीता दत्त की फिल्म मुनीम जी से

दिल की उमंगें हैं जवां, बेहद खूबसूरत है नगमा। मुनीम जी फिल्म से हेमंत कुमार साहब और गीता दत्त की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में यकीनन ये दिल को सुकून पहुंचाने वाला थोड़ा मजाहिया टाइप का ये नगमा यकीनन कहीं ना कहीं हमारे दिल में जो खामोशियां हैं, हमारे दिल में जो कुछ गुबार है, हमारे दिल में जो थोड़ी बहुत परेशानियां हैं उसको दूर करता हुआ ये नगमा दिल की उमंगें हैं जवा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरती के साथ गाया भी गया है। अगर सुने दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर महफिल है अरुणिमा की, और अरुणिमा में हम आगे बढ़ेंगे एक और बहुत ही प्यारे नगमे के साथ, और नगमा है फिल्म प्यासा सावन से। लता मंगेशकर जी की बहुत ही प्यारी आवाज में तेरा साथ है तो हमें क्या कमी है, यानी अगर जब आपके साथ कोई आपका अपना हो तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस आप उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहें। अगर आप कहीं गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं तो वो थाम लेगा, और अगर वो कहीं पे लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं या राह भटकते हैं तो आप उसे थाम लेंगे। ऐसे ही जिंदगी आगे बढ़ती है, और जिंदगी कितनी खूबसूरत है जब आपका अपना कोई हम सफ़र हो तब पता चलती है ये बात। फिलहाल आगे बढ़ते हैं इस बहुत ही प्यारे नगमे के साथ।

तेरा साथ है तो हमें क्या कमी है। फिल्म प्यासा सावन का यह नगमा लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर और महफिल सजी है आपकी अपनी अरुणिमा की। और अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं आपके अपने चैनल आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी में मुश्किलात आए तो मायूस बिल्कुल भी मत होइए, क्योंकि हर अंधेरे के बाद रोशनी जरूर आती है और वो रोशनी आपको एक नई मंजिल की तरफ लेकर जाती है। मुश्किलात आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन उन परेशानियों से डटकर जो मुकाबला करके आगे बढ़ेगा वही जिंदगी में सच्चा कामयाब योद्धा होगा। और कहते हैं कि दो लफ्जों की है ये दिल की कहानी, मोहब्बत और मुस्कुराहट से भरी ये जिंदगानी। मोहब्बत और मुस्कुराहट के साथ अगर आप जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं तो फिर कामयाबी आपके कदमों में होती है। इसी नगमे के साथ, ऐसे ही नगमों के साथ हम आगे बढ़ेंगे द ग्रेट गैम्बलर फिल्म से आशा भोसले और अमिताभ बच्चन साहब की बहुत ही प्यारी आवाज में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: वेश आए तू, ए क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के? अच्छा

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर मैं फेरोज अब तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 4:34:50। महफिल है अरुणिमा की और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फेरोज। तो चलिए इस सफर को यूं ही बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं और जिंदगी के सफर के साथ साथ इस सफर को भी यूं ही आगे बढ़ाते हैं एक और बहुत ही प्यारे नगमे के साथ, फिल्म सपनों का सौदागर से। आवाजें हैं मुकेश साहब और शारदा की।

तुम प्यार से देखो हम प्यार से देखें जीवन के सफर में बन जाए उजाला। ये नगमा था सपनों का सौदागर फिल्म से, आवाजें मुकेश साहब और शारदा की। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अरुणिमा की यह महफिल। जावेद नसीमी कहते हैं कि एक चेहरा है जो आंखों में बसा रहता है, एक चेहरा है जो आंखों में बसा रहता है, एक तस्वीर है जो तन्हा नहीं होने देता। यकीनन कोई एक चेहरा ऐसा होता है, कोई एक शख्स ऐसा होता है जो आपकी आंखों में बसा होता है, आपकी जिंदगी का हिस्सा होता है, और वो अगर साथ आपके चलता है तो फिर ये सफर भी बहुत ही आसान हो जाता है। और जब वो सफर आसान होता है तो वो और ज्यादा करीब आपके होता जाता है, और एक वक्त ऐसा आता है जब वो बिल्कुल आपके अपने दिल में उतर जाता है, और वो कोई और नहीं होता, वो होता है जो आपको जानता है, आपको समझता है, आपके जज्बात की कदर करता है। वही वो शख्स होता है जो आपके दिल में उतर सकता है। और अगर ऐसा है तो फिर आप समझे कि आपकी जिंदगी बेहद खूबसूरत और कामयाब है। अगला नगमा कुछ ऐसा ही है, फिल्म वक्त से आशा भोसले और महेंद्र कपूर साहब की बहुत ही प्यारी आवाज में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अरुणिमा की इस बहुत ही प्यारी महफिल में।

हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। वक्त फिल्म का है नगमा, आशा भोसले जी और महेंद्र कपूर साहब की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अरुणिमा की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में। ये वो महफिल है जिसमें आप जिंदगी की बातें करते हैं, जिंदगी की बातें सुनते हैं और जिंदगी को खूबसूरती के साथ, पॉजिटिविटी के साथ कैसे आगे बढ़ाई जाए उसके बारे में बातें करते हैं। आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, हमारा ये सफ़र कैसा लग रहा है, हमें ज़रूर बताइएगा। और उसके लिए आपको हमारे ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, आप अपना फीडबैक इस पर भेज सकते हैं। और हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdaily@gmail.com fmgoldairdaily@gmail.com। तो आप अपने पैगाम के जरिए हमसे जुड़े और हम आपके लिए जो बेहतरीन नगमे लेकर आए हैं, जो जिंदगी से जुड़े हुए हैं, वो तमाम नगमे हम आपके खिदमत में यूं ही पेश करते रहेंगे। अगला नगमा हमराज फिल्म का तुम अगर साथ देने का वादा करो, महेंद्र कपूर साहब की बहुत ही प्यारी आवाजों में ये नगमा आपके दिल को सुकून पहुंचाएगा। और अगर कोई है जिसका आप साथ देना चाहते हैं और कोई है जिसका आप साथ चाहते हैं, तो यकीन मानिए ये नगमा आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करेगा।

तुम अगर साथ देने का वादा करो। हमराज फिल्म का यह नगमा महेंद्र कपूर साहब की बहुत ही प्यारी आवाजों में। इस नगमे ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। अगर आपका हमरा ही आपका हम कदम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है और कुछ पल जिंदगी में सुकून के भी चाहिए होते हैं। अगर वो सुकून आपके जिंदगी में है तो फिर दुनिया आपके कदमों में होगी। बिल्कुल इस बेहद खूबसूरत कलाम की तरफ। और यह गजल है फिल्म मौसम से। लता जी और भूपेंद्र साहब की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये नज़्म बेहद प्यारी बेहद खूबसूरत, जरूर पसंद आएगी आपको।

0: लता जी और भूपेंद्र सिंह की नई आवाजों के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत अरुणिमा से। लेकिन सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार मैं फिर रहूंगा आपके साथ लेकर अगला प्रोग्राम। तब तक के लिए नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे दिन के 11 बजे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेंगे और आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वे उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद जाएंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुड्डे बेलूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य देखभाल

0: बुनियादी ढांचा के तहत महत्वपूर्ण सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। ये अस्पताल हैदराबाद में अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दौरान श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे और कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया है। तमिलनाडु में तमिलगा वित्री कड़गम टीवी के कई प्रमुख सी जोसेफ विजय ने कल लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारे संवाददाता ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि श्री विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज चेन्नई पहुंचेंगे। कई वरिष्ठ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल के नेता, फिल्मी हस्तियां और पार्टी कार्यकर्ताओं के समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दास मुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्नीथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि केरलम के नए मुख्यमंत्री का निर्णय पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का होगा और जल्द ही नाम की घोषणा कर दी जाएगी। सरकारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति एन रंगासामी को उनके शपथ ग्रहण की तिथि से पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त करती हैं। अधिसूचना के बाद उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने रंगासामी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। रंगासामी 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए खरीद संबंधी अनुपालन दिशा निर्देशों की नियमावली लागू करके केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कार्यरत बाहरी स्रोत और संविदा कर्मचारियों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य वेतन का समय पर भुगतान करना, सामाजिक सुरक्षा अंशदान का अनिवार्य भुगतान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही और श्रम कानून के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन तंत्र सुनिश्चित करना है। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा और ये मैच 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की उम्मीद है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. Mr. Modi will first travel to Karnataka to participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. He will also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Thereafter, Prime Minister Modi will travel to Telangana to lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad. These projects collectively aim to strengthen connectivity, improve logistics efficiency, enhance safety and provide a better travel experience for people. Later in the day, Mr. Modi will reach Jamnagar,

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 5:10 और 59 सेकंड और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी का। भोर सुहानी की वो महफिल जिसमें जिंदगी से जुड़ी हुई बातें तो होती ही हैं, साथ ही साथ किस तरीके से हम जिंदगी को आगे बढ़ाएं उसकी बातें भी होती है, और ये भी कि हम जिंदगी में उन तमाम मुश्किलात से कैसे मुकाबला करते हुए आगे बढ़े और अपनी मंजिल को तय करें। लेकिन हर सुबह जब हम जगते हैं, हर सुबह जब हम अपने बिस्तर से बाहर निकलते हैं, तो सबसे पहले हम ईश्वर का नाम लेते हैं, खुदा का नाम लेते हैं, और खुदा के नाम के साथ ही, ईश्वर के नाम के साथ ही हम हर नए दिन का आगाज करते हैं। तो हम भी आज उसी खुदा, उसी ईश्वर के नाम हम लेते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आज हम भी एक नई सुबह में कदम रख चुके हैं, तो आइए आज की सुबह का आगाज करते हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर भोर सुहानी में, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फिरोज। तो आइए आज के इस सफर को हम यूं ही आगे बढ़ाते हैं, उस खुदा का नाम लेते हुए, उस ईश्वर का नाम लेते हुए जिसने हमें पैदा किया और हमें एक बेहतर इंसान बनाया। ये नगमा है फिल्म द बर्निंग ट्रेन से, आवाज़ है सुषमा श्रेष्ठ की।

जिया तेरी है जमीन तेरा आसमां, सब कुछ तुम्हारा दिया हुआ, ये जान ये जिस्म और ये सेहत, ये तमाम चीजें तुम्हारी दी हुई है, यानी उस खुदा उस ईश्वर की दी हुई है। वो चाहे तो हमें इससे भी बेहतर कर सकता है, वो चाहे तो हमें इससे भी बुरे हालात में रख सकता है, लेकिन हर हालात में वो हमारे लिए बेहतर सोचता है। वो सर्वश्रेष्ठ है और इंसान को भी ऐसा ही बनाया है। और इंसान के बारे में ये कहा जाता है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, यानी दुनिया में जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उसमें सबसे बेहतर सिर्फ और सिर्फ इंसान को बनाया गया है। और तमाम चीज़ों पर, तमाम कुदरती चीज़ों पर एक इंसान ही है जो अपनी हुकूमत करता है। और इंसान बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छा है। अगर सही दिशा में चले, सही रास्ते पर चले, तो ज़िंदगी बेहद खूबसूरत है। और वही इंसान जब कोई गलत रास्ता इख्तियार कर ले, तो सब के लिए, पूरे समाज के साथ साथ पूरे देश, पूरे वतन, पूरे मुल्क के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित होता है। इसलिए हमेशा ये कोशिश करें कि एक अच्छे इंसान बनकर एक अच्छी ज़िंदगी बनाए और औरों को साथ लेकर आगे बढ़े। और कहते हैं कि हर नया दिन, हर नई सुबह एक नई शुरुआत लेकर आता है, एक नया पैगाम लेकर आता है, एक नई रोशनी के साथ आता है और ज़िंदगी में नए ख्वाब सजाने के लिए आता है। इसलिए हम भी कोशिश करें कि हर नए दिन में, एक नई सुबह में, एक नई सोच के साथ, नई उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ें और अपने कदम को आगे बढ़ाएं और हर सुबह को एक नई उम्मीद के साथ जीने की कोशिश करें इस नगमे की तरह। फिर मैं आज का ये नगमा और आवाज़ है ये सुदास की।

जी हाँ, ये सुबह सुहानी ज़रूर है, बेहद खूबसूरत है और बहुत ही प्यारी भी है, क्योंकि हर सुबह एक नया पैगाम लेकर आती है, एक नई उम्मीद के साथ आती है। ज़िंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हर नया दिन आगे बढ़ने और नई ज़िंदगी शुरू करने का मौका देता है, और इसीलिए हम हर नए दिन को एक नए अवसर के तौर पर लें, ताकि हमारी ज़िंदगी रुके नहीं, थमे नहीं और बस आगे बढ़ती जाए। क्योंकि ज़िंदगी में अगर हम रुक गए तो ज़िंदगी वहीं थम सी जाती है। तो आप भी अगर जग गए हैं तो जल्दी से बाहर निकलें और देखें कि मौसम कितना खूबसूरत, कितना प्यारा है, और साथ ही साथ इस नई सुबह में चिड़ियों का चहचहाना भी आपने सुन लिया, और बहुत ही खूबसूरत इस सुबह में हम अपने कदम को बढ़ाना भी शुरू कर चुके हैं। आपने भी अगर अभी तक अपने बिस्तर छोड़े नहीं है तो जल्दी से उठिए और बाहर निकलिए, देखिए कितना सुहाना है ये दिन। और कहते हैं कि हर नया दिन हमें ये नया पैगाम इस तरीके से लेके आता है कि हमारे लिए आज का दिन एक कुछ नया करने का दिन है, एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ने का दिन है, और ये प्रण लेने का दिन है कि हम आज एक नया काम ये करेंगे कि किसी हंसते को, किसी रोते को देखकर, हम किसी रोते को देखकर उसको हंसाने की कोशिश करेंगे, किसी भी तरह से मदद करके, चाहे मामूली सी ही क्यों ना हो, बस वो छोटी सी मदद ही उसकी ज़िंदगी संवार सकती है, उसकी ज़िंदगी बना सकती है। इसी तरीके से जीवन चलता है और चलता ही रहेगा, और आप भी हम भी यूं ही चलते रहेंगे, लेकिन कोशिश हमें यही करनी है कि जीवन को खुशियों के साथ आगे बढ़ाएं, क्योंकि जीवन चलने का नाम है।